0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8 आर रेडियो, आर कम्युनिटी, आर प्राइड। मैं आपकी आरजे अनुषा। मैं उठना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। पर्यटन या यात्रा, इस शब्द के तो हम सभी प्रेमी हैं। यात्रा, ट्रैवल, पर्यटन अथवा ऐसी कई चीजों से हम प्रभावित हुए हैं। कोई चला दिल्ली तो कोई चला लद्दाख, कोई चला अंडमान तो कोई गया यूरोप। इस रफ्तार का नाम ही पर्यटन है। आइए अब हम सुनते हैं देविका से कि आखिर हमें क्यों पर्यटन या यात्रा करना चाहिए।
1: दुनिया रोमांच से भरा है और भूमि है कि अभी तक की खोज में पड़ी है। यहाँ लोग यात्रा है और जगह जगह में विस्थापित करते हैं। मानव प्रवृत्ति का हिस्सा है। मेरे विचार में लोग दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए हरियाली, चराई की खोज में और एक अन्य श्रेणी मजा और साहसिक कार्य के लिए और आसपास के देशों में अवसरों का पता लगाने के लिए यात्रा करते हैं।
0: धन्यवाद देविका, आपकी यह परिभाषा याद रहेगी और हम सबको यात्रा करने पर मजबूर बना देगी। मुझे तो बस इसी वक्त इसी पल ट्रेन पकड़कर कहीं जाने का मन हो रहा है, पर कहाँ, ये तो बड़ी दुविधा है। ऐसी ही आपकी परेशानियों को दूर करने हीरा आ रही है कुछ स्थानों के नाम और उनके महत्व लेकर, जहाँ हमें अपने जिंदगी में एक बार तो जरूर जाना चाहिए।
2: मैं आप सभी से अभी भारत के कई प्रसिद्ध जगह के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। पहला है गोवा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल गोवा अपने समुद्री तटों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वहाँ के कलंगुट बीच गोवा की बीचों की महारानी कहलाता है, क्योंकि वह बीच पनाजी से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर है। अगला है अर्जुना बीच। नारियलों के वृक्षों से धीरे इस बीच के रेत लाल रंग की है। अगला है डोनापोला बीच, पागरा बीच, बगाठरो बीच, बामा जीसस चर्च, सेंट कैथेड्रल चर्च आदि जगह। दूसरा है जयपुर, जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में राजस्थान राज्य की राजधानी है। शहर में बहुत से पर्यटन आकर्षण हैं, जैसे जंतर मंतर, जयपुर हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, अजमेर का किला आदि। गुड़ियाघर भी है। पुलिस स्मारक के पास मुख्य प्रदीप विद्यालय के आहते में विभिन्न देशों की प्यारी गुड़िया यहाँ प्रकाशित है। तीसरा है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और ब्रिटिश कालीन समय में ग्रीष्म कालीन राजधानी शिमला राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। रिज शहर के मध्य में एक बड़ा और खुला स्थान, जहां से पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। मॉल शिमला का मुख्य शॉपिंग सेंटर है, वहां रेस्टोरेंट्स भी है। कालीबाड़ी मंदिर, यह मंदिर स्कैडल पॉइंट से जनरल पोस्ट ऑफिस से की और कुछ गज की दूरी पर स्थित है। और अगला है वाराणसी। वाराणसी काशी की हिंदू धर्म में पवित्रता नगर माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसमें भगवान शिव के बारे में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रमुख शिवलिंग यहाँ स्थापित है। हिंदू मान्यता अनुसार गंगा नदी सबके पाप मार्जन करती है। और पांचवा है अमृतसर। सिख धर्म का चौथा गुरु श्री रामदास जी द्वारा बसाया गया है यह शहर। स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का पांचवा गुरु इस गुरुद्वारा को स्थापित किया था। सभी धर्म के लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। और जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग, ये देखो यह छली थी गोलियां, मत पूछो किसने खोली यह खून की होलियां। एक तरफ बंदूक के दन दन, एक तरफ थी होल डोलियां, मरने वाली बोल रही थी इनका लाभ की बोलियां।
0: यह तो कमाल का नाम बता गई, धन्यवाद हीरा। एंग ऊर मेड्रास अदक नांग दाने एड्रेस। आप सोच रहे होंगे कि मैं यह क्यों गा रही हूँ, पर चेन्नई में रहते हुए चेन्नई के रास्ते ना देखा हो तो जीना हराम है। आइए सुनिए राजलक्ष्मी से कि हम अगले संडे कहाँ चलें।
3: चेन्नई में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें मत्स्य पालन केंद्र, कपालीश्वर और पातसादी का मंदिर, अजायब घर और चिड़ियाघर, महाबलीपुरम, मॉल्स जैसे एक्सप्रेस एवेन्यू, स्पेंसर, फीनिक्स आदि प्रमुख है। चेन्नई का मरीना बीच विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है। इसके 200 से 300 गज चौड़े रेतीले तट पर शाम को इतनी अधिक भीड़ होती है कि लगता है मानो सारा शहर वहाँ वही आ गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेरीना बीच पर एक स्विमिंग पूल भी है। इसी के पास एक मछली घर भी है। चेन्नई का एक स्नेक पार्क भी पर्यटकों को प्रभावित करता है। ये 500 से भी ज्यादा खतरनाक भारतीय सांपों का जीवित संग्रहालय कहा जा सकता है। ट्रिप्लिकेन में स्थित पादशादी मंदिर के लिए उल्लेख है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा पल्लव ने करवाया था। इस देवस्थान की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां अंकित है। दूसरा आकर्षक मंदिर है द्रविड़ शिल्पकला में निर्मित मैलापुर में स्थित कपालीश्वर मंदिर। इसके साथ ही यहाँ केले, नारियल और पाम के खूबसूरत पेड़ में यात्रियों को क्यूब लुभाते हैं।
0: धन्यवाद राजलक्ष्मी। अगले संडे का प्लान तो तय हुआ। याद रहे, आप सुन रहे हैं एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8 आर रेडियो आर कम्युनिटी आप राइट। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अच्छे यात्री की तय योजना नहीं होती और उसका इरादा उस जगह पर पहुंचने से कई ज्यादा बड़ा होता है। अब मेरी समझ में तो बस यही है, लेकिन संजना आ रही है कुछ तर्क लेकर कि हमें ऐसी लंबी यात्राओं पर क्या करना चाहिए।
4: जब मैं अकेले दूर ट्रैवल करती हूँ तब मैं बुक्स पढ़ती हूँ। अगर मेरे साथ फैमिली मेंबर्स आते हैं तो उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अगर यही आसपास में कहीं जानती हूँ तो फ्रेंड्स के साथ बातें करती हूँ या तो गाना सुनती हूँ। अगर ऐसे ही कोई जगह ट्रैवल करती हूँ, जगह नेचर से भरा हुआ और ऐसा खामोश हो, वहाँ सिर्फ उस नेचर ऑफ ब्यूटी को एडमायर करना अच्छा लगता हूँ।
0: धन्यवाद संजना। मन भी बना लिया, जगह भी तय कर ली, सामान भी बांध लिया, अब क्या मंजिल तक की यात्रा कराने प्रस्तुत है अश्विनी।
5: जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पद पर मेल कही, सीमित पग डग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। धाव भाव सुख दुख चलते सुमुख चलता पद का प्रसाद, जिस जिस से पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। सौसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई, दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नवस्मृति थकावट दूर हुई।

0: हुई। पद के पहचान छूट गए पर साथ साथ चल रही याद, जिस जिस से पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जो साथ ना मेरा दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी ना चलूं यदि तो क्या, राही मर लेकिन राह अमर। इस पद पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद, जिस जिस से पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद।
1: धन्यवाद अश्विनी, बहुत खूबसूरत सा पोएम बोला आपने। जहाँ से तुम मुझे लाए हो मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, जहाँ भी तुम मुझे ले जा रहे हो वहाँ मैं पहुँचना नहीं चाहता, पर ये रास्ता बहुत छोटा है, मैं चाहती हूँ कि ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। ऐसी ही एक अनकही सफर को जगाने आ रही हैं सौंदर्या एक गाना सुनाने, और उसके बाद खुशबू और सोनल अपने अनुभव लेकर प्रस्तुत होंगी।

0: जिंदगी रफ्तार चाहती है। इस रफ्तार को अंजाम देने का एहसास बहुत कम लोगों में होता है, पर जो अंजाम देते हैं वो दुनिया में नाम कमा लेते हैं। ऐसी ही कहानी को बताने ऐश्वर्या प्रकाश आ रही है।
1: सर रोनाल्ड फिनस, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार रोनाल्ड फिनस दुनिया के सबसे बड़े कोच के रहने वाले हैं। तो जो हम बहस कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों के अलावा वह पहले व्यक्ति पूरे तरह से पैर और पहले व्यक्ति पर अंटार्कटिका को पार करने की सतह माध्यम से दोनों उत्तर और दक्षिण डंडे यात्रा करने के लिए किया गया था। पहाड़ों के लिए नदियों से फिनस रोमांच हर जगह कोच कट के लिए एक प्रेरणा है। कैप्टन कुक सब कुछ एक अच्छा यात्री होना चाहिए था, एक पुराने योजनाकार और अपनी यात्रा के अनुशासित रिकॉर्डर। कुक का जन्म एक नेता, अपने हाथों से अच्छा और विदेशी संस्कृतियों और सीमा शुल्क के बारे में सही मायने में उत्सुक था। देर से 1700 के दशक के मध्य में खाना कोच की है और किसी से भी दुनिया के और अधिक मैप किया उसे पहले। दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी शामिल है।
0: धन्यवाद ऐश्वर्या। आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8 आर रेडियो आर कम्युनिटी आप राइट। अब आ रही हैं सोनल और खुशबू अपनी छोटी सी यात्रा के अनुभव लेकर।
2: हे खुशबू, तुम यहाँ कैसे?
3: मैं बोला हाय सोनल, हाँ मैं यहाँ पे बाजार तक आई थी।
2: ओ अच्छा, ठीक है, कैसी हो तुम?
3: हाँ मैं बस ठीक हूँ, आप? तू कैसी है?
2: मैं ठीक हूँ। और तुम्हारा राजस्थान का ट्रिप कैसे रहा?
3: हाँ राजस्थान का ट्रिप बहुत तो बहुत बढ़िया था। हम लोग मैं फैमिली के साथ जाके आई थी। इतने सारे जगह जाके आई कि इतना एक्साइटेड, मैं जैसे घर से निकली थी उतनी एक्साइटेड थी मैं फ्लाइट में जा रही हूँ। और फ्लाइट का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था। मैं बचपन से मेरी इच्छा थी मुझे फ्लाइट में एक बार तो जाना पड़ेगा। ऐसे
2: कैसा रहा तो फिर तुम्हारा फ्लाइट का एक्सपीरियंस?
3: फ्लाइट का एक्सपीरियंस ऐसे बोलो तो अच्छा ही लगा, बट क्या है उसमें थोड़ा एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि 2 घंटा ऐसे फालतू बैठना पड़ता है।
2: ओ मैडम, फालतू नहीं बैठ सकती हो क्या?
3: तो ऑब्वियसली तुझे पता है कि मैं फालतू नहीं बैठ सकती हूँ, फिर भी 2 घंटा ना गाना सुनना ना टीवी देखना किसी से बात भी नहीं करना अच्छा लगता, क्योंकि ट्रैवलिंग फ्लाइट ऊपर चढ़ती तो वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, इसके कारण ऐसे मुंह बंद करके बैठना पड़ा।
2: अच्छा ठीक है, फिर राजस्थान में तुमने कहाँ कहाँ घूमा?
3: पहले हम लोग आके अहमदाबाद से नाकोड़ा गए थे, नाकोड़ा से हम लोग जयपुर गए थे। जयपुर में ऐसे एक जगह है जो बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं, पिंक सिटी।
2: हाँ, जैसे उसका तो नाम सुना है पर कभी देखा नहीं है।
3: कौन सी दुकान जाए, कौन सा क्या वहाँ पे क्या है, इस दुकान से उस दुकान में क्या फर्क पड़ा, हम लोगों को इतना कंफ्यूजन था वहाँ पे।
2: ओ अच्छा ठीक है। और
3: सर मैं भी सुनी थी कि तू अभी शिमला जाके आई थी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तू तेरी एक्सपीरियंस तू बता। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ, अपनी एक्सपीरियंस बता।
2: हाँ अभी रिसेंटली मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शिमला गए थे। हम लोग करीब 25 लोग थे, हम भी फ्लाइट में ही गए थे। यहाँ से फर्स्ट दिल्ली गए थे, दिल्ली के बाद वहाँ से अमृतसर की फ्लाइट थी।
3: तो मैंने सुना अमृतसर में कोई फेमस टेम्पल है, हाँ गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ पे जाके आई थी?
2: हाँ बहुत अच्छा था, काम था, बहुत अच्छा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस। और वह कहते हैं कि मीन्स वहाँ जाके मन्नत पूछे तो पूरी होती है हमारी मन्नत।
3: तो ऐसी कोई मन्नत तूने पूछे जो तुझे फ्यूचर में पूरी होनी चाहिए?
2: नहीं ऐसा कुछ नहीं। और फिर हम लोग वहाँ से सोनमार्ग गुलमार्ग के लिए कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ भी पूरा हम लोग एक्चुअली ऑक्सीजन में गए थे तो ज़्यादा कुछ नहीं था, पर फिर भी सोनमार्ग और गुलमार्ग में हमें बर्फ देखने को मिला था।
3: तो मज़ा आया होगा बर्फ में तो इतना?
2: हाँ, हम लोग बहुत खेले, करीब 3-4 घंटे हम लोग वहाँ खेले थे, पूरा बर्फ एक दूसरे पर फेंके, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, फिर मैगी खाए। बहुत ठंड थी वहाँ पर, हम लोग ऑफ सीजन में गए थे तो इतना पता नहीं चला, लेकिन जो भी ऑन सीजन में जाते हैं तो वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा बर्फ होती है। और फिर सोनमार्ग में हम लोग फेज टू में गए थे, जैसे जन्नत की तरह थी, पूरी तरफ से स्नो से भरा हुआ था।
3: और लाइक मुझे अच्छा लग रहा है तेरी ये बातें सुन के, और मुझे भी मन कर रहा है कि अगली बार मेरे फैमिली में कोई टूर जाने के लिए कुछ सजेशंस पूछेंगे तो मैं शिमला ही बोलूंगी, क्योंकि तेरी ये बातें से मुझे इतना लाइक मुझे वहाँ पे जाना है, मेरे अंदर से मुझे वहाँ पे ही जाना मन कर रहा है।
2: सभी लोग अपने जीवन में एक बार तो वहाँ जाए, बहुत अच्छी जगह है वहाँ देखने के लिए। भारत में ऐसी कई जगह है देखने के लिए, पर फिर भी लोग यहाँ नहीं प्रेफर करते, लोग बस विदेश जाने का प्रेफर करते हैं।
3: हाँ, सब लोग कहते हैं विदेश, भारत से विदेश बहुत अच्छा, मगर ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे कई जगह है जो हमें भी नहीं पता, इतनी सुंदर सुंदर जगह है भारत में भी
2: बहुत। भारत में वैष्णव देवी का टेम्पल भी बहुत अच्छा था।
3: ओके सोनल, मुझे अभी लाइक मुझे निकलना पड़ रहा है, टाइम भी हो गया, अभी हम अगली बार मिलेंगे।
2: ठीक है, बाय।
0: सोनल और खुशबू की बातें सुन के मुझे तो अभी के अभी कश्मीर जाने का मन कर रहा है। बस आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, चार पंक्तियों का एक गीत से मैं इस कार्यक्रम को विराम देना चाहती हूँ। यूं